एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिन बजार सेंजा।

पहाड़ हिमाल भरी सेती काली तारी सातौ चंडी गरम आलम परिक्रमा करी संस्कृति को जगेरना र कृषि व्यापार शिक्षा सबै तीर छाई रहोस् नेपाल।

0: सुनत न
1: आइए हम लोग दिल्ली बजे
2: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: देगा और सात से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले क्या हो।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।